0: मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजर और मोहतमीम सभी कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोंटे करने लगा।
1: हम क्या नीच है और ये लोग क्या ऊंच है? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक चंटे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारी गडरिया की बेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा। इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी।
2: खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है।
0: हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है।
2: हाँ, यह तो ना हुआ कि कसलिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी भर लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है।
0: लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही तो लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है?
2: मत ला जाओ दीदी, दिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाऊ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता।
0: दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था,

वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगी दबे पाव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा गड़े में डाला, दाए बाए चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को

0: रत्ती भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न आई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा दड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर,
1: कौन है, कौन है?
0: पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि झोंकू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। धन्यवाद।
2: सुनो अफसाना, जिंदगी के कच्चे रंगों की पक्की कहानी എന്ന പരിപാടിയിൽ ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് കേട്ട കഥ മുൻഷി പ്രേംചന്ദിന്റെ ഠാക്കൂർ കാ കുവ, അവതരണം അനഘ രാമചന്ദ്രൻ.
3: സുനോ അഫ്സാന, ജിന്ദഗി കേ കച്ചേ രംഗോ കി പക്കി കഹാനി. പ്രസ്തോത അനഘ രാമചന്ദ്രൻ.
4: നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ കൊച്ചി 90 FM.